0: Fatima Sana, in order to try and field the ball, came in her way, which is interesting. It could spark some sort of debate. Anyhow, next delivery of the over, onto the body line, delivered on the shorter side of good length, allows Smriti to pull it towards the long leg fielder, where Sadia Iqbal moves towards her left, picks it up, hurls it back to the wicketkeeper. Whilst all that is done, a single has been taken, two overs done. 10 for 1, our team India.
1: तो कुल मिलाकर इस ओवर के दौरान मात्र 3 ही रन आए और निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से एक बढ़िया शुरुआत की जा सकती है. अब तक पहले दो ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं उन्होंने भारत के तेज तरार बैटर्स को और एक विकेट बदले में हासिल कर लिया है, वो भी शेफाली वर्मा जैसी तेज तरार बैटर का. तो देखना यह है कि तीसरे ओवर में क्या कुछ हो पाता है. क्या सादिया इकबाल ही गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी या फिर फातिमा साना वहाँ पर कोई गेंदबाजी में परिवर्तन करना पसंद करेंगी, देखना निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प होगा. आज यास्तिका भाटिया को टीम में जगह नहीं मिली है और उनकी जगह पर भारतीय फुलमली को टीम में रखा गया है. हालांकि यास्तिका अच्छा प्रदर्शन कर रही थी हाल फिलहाल में, लेकिन आज टीम में उनकी जगह नहीं बनी है. सादिया इकबाल गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगे. बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज ओवर द विकेट, ये गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड ऑफ स्टंप की तरफ. स्मृति मंदाना ने फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को हल्के से पुश किया ऑफ साइड में, गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के. तीसरा ओवर प्रगति पर, टॉस जीतकर पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है इस मुकाबले में. भारत का ये पहला मुकाबला है इस ICC महिला T20 विश्व कप का और पाकिस्तान के लिए भी ये पहला मुकाबला. अब अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, डाइव करके रोकने की कोशिश जरूर की थी वहां पर आलिया रियाज ने, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकते हुए सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: फील्डिंग में चूक जहां पर शायद 2 रन हो सकते थे, 2 रन अतिरिक्त भारत के खाते में जोड़ते हुए 4 रनों के साथ भारत 14 एक विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को फिर से गेंद की पिच के नजदीक जाकर हल्के से पुश किया कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर, गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के. स्मृति मंदाना से काफी उम्मीदें हैं. यदि आप स्मृति मंदाना को देखें तो एक शतक भी उनका T20 मैचेस में अब तक नजर आता है. इसी बीच अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: बेहतरीन अंदाज में फ्रंट फुट पे जाकर बिल्कुल गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गैप को तलाशने में पूरी तरह से कामयाब रही इस अवसर पर स्मृति मंदाना, और इस ओवर में अब तक 2 चौके भी लगा चुकी हैं. कुल मिलाकर 8 रन अब तक आ चुकी हैं. दो गेंदें अभी बाकी बची हैं सादिया के इस ओवर में, जबकि स्मृति का अपना व्यक्तिगत स्कोर इन 2 चौकों की मदद से फिलहाल दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर. वो अगली गेंद, इस बार गेंद को पूरा सम्मान दिया, फ्रंट फुट पे जाकर गेंद को बल्ले के नीचे आकर के टकराने दिया और गेंद को वहां पर फील्ड किया गया ऑफ साइड में बिना किसी रन के. अंतिम गेंद लेकर सादिया इकबाल एक बार फिर से तैयार. 30 वर्ष की उनकी उम्र और ICC रैंकिंग में पिछले कुछ समय से शीर्ष स्थान पर हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले दर्पण बता रहे थे कि अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी हैं. अगली गेंद को फिर से हल्के से ड्राइव किया था ऑफ साइड पे, लेकिन इस बार गेंद को फिर से 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड किया गया. ओवर की समाप्ति हुई.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली. जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा सेहत के सफर में आपका हम

0: and hence Mandhana said no. She sent Jemima back from halfway down the pitch. Jemima makes it safely home and after that holds her hand up in apology. She had punched this one straight to mid-on and Smriti Mandhana did not see the need to run. Rodriguez says that it was her fault. However, this shows a bit of desperation. Next delivery, she goes for a big shot and completely miscues it. And the catch has been put down. No! Takes it on the second attempt. Does Natalia Parvez and India lose their second wicket? This was delivered on the fuller side of good length. It was angling away from the right-hander, not too far from the off stump. And for some reason, Jemima Rodriguez, who had faced 5 dot balls before this, that desperation was showing. She pressed forward and tried to hike it, tried to slog it. That is not her strength. She's known for playing those straight batted shots, a technical sound player. However, she went for a slog. The ball hit the outer half of the bat, went straight up, and Natalia Parvez ran in a few steps from extra cover, settled underneath it, yet she juggled it. She did not catch it on the first attempt. The ball popped out of her hand and she grabbed it on the second attempt. The score is 18 for 2 after 3.2 overs. The start for India has not been great.
1: निश्चित रूप से भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है टॉस जीतकर. जिस तरह की उम्मीद थी भारत को कि टॉस जीतने के बाद भारत एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगा और शुरुआत से ही कुछ तेज तर्रार अंदाज में रन बटोरेगा, लेकिन यहाँ पर भारत की शुरुआत तो ज़रूर अच्छी हुई. पहले ओवर की पहली गेंद पर शफाली वर्मा ने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका विकेट चटकाने में सादिया कामयाब रही थी पहले ही ओवर के दौरान. और इस समय एक और झटका भारत को चौथे ओवर के दौरान लग चुका है, चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर, जब जेमिमा रॉड्रिक्स वापस पवेलियन लौट चुकी हैं. और कहना होगा कि अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलें भारत के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं. क्या यहाँ से भारतीय पारी को संभालने में कामयाब रहेंगी हरमनप्रीत कौर? और हालांकि बल्लेबाजी के लिए अभी काफ़ी अच्छा खासा लाइनअप है भारत के पास, लेकिन फिलहाल जो तमाम दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो हरमनप्रीत कौर के पास है. हरमनप्रीत कौर जो कि एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी जो कि 10वां विश्व कप खेल रही हैं और साथ ही साथ 5वां ऐसा अवसर जबकि वो कप्तानी कर रही हैं T20 विश्व कप में. आते ही उन्होंने अपना खाता खोला और जो एक दबाव होता है पहले रन का, उसे अपने आप को उससे पूरी तरह से मुक्त कर लिया वहां पर तर्पण.
0: वेल आई गॉट टू से दैट तास्मिया रुबाब वाज अ बिट जेनरस, डिलीवर्ड अ हाफ वॉली ऑन हर पैड्स एंड देयरफॉर हरमनप्रीत कौर वाज एबल टू टक इट टुवर्ड्स स्क्वायर लेग एंड पिक अप दैट कंफर्टेबल सिंगल. सो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आउट देयर इन द मिडल. रिमेंबर द इनिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट बॉल 6. शेफाली वर्मा टुडे बिकेम द फर्स्ट बैटर टू हिट अ फर्स्ट बॉल 6 इन अ वर्ल्ड कप मैच इन वुमेन्स T20 क्रिकेट. But however, after that, Pakistan have come back well. They have dismissed Shefali. They have dismissed Jemima. India are 19 for 2 after 3.5 overs. Two fielders allowed outside the 25-yard circle in the first 6 overs. Currently, they are deep backward square leg and deep backward point. Smriti Mandhana to face. This one is delivered on a length outside the off stump. And in a very measured manner, Smriti plays it away from the body, but in a very controlled manner towards cover. She has looked steady, she has looked sturdy, she has hit a couple of boundaries already, but the important thing is that Smriti Mandhana has not looked rushed, unlike the other two batters who have gotten out. Next delivery from Tasmia, delivers this one on a good length and it nips back in sharply. However, Mandhana had it covered. It finished near the middle end leg, 106 kilometers per hour, which means Tasmia is pretty brisk. However, Mandhana was able to tuck it towards the gap at square leg and pick up a comfortable single. Harmanpreet Kaur today is playing her 40th match in a T20 World Cup and she's among the top 5 players when it comes to most matches played in this World Cup, the T20 format in women's cricket. Meanwhile, the next delivery, a slower one by the looks of it from Tasmia Rubab, angled away and finished outside the off stump. However, Harmanpreet was able to get her bat behind it and nudge it back towards the bowler. Fourth over done, 20 for 2, Team India.
1: So Harmanpreet ne wahan ek run banane ke saath hi 727 run bana liye hain T20 Vishwa Cup mein, jo ki Bharat ki Mitali Raj ke 726 run se अब एक रन आगे हो गए हैं. तो T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का श्रेय अब हर

0: हरप्रीत कौर के नाम दर्ज हो चुका है। और हमारे स्टेटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए छठा अवसर था, जबकि वो एक के स्कोर पर अपनी 127 पारियों में अब तक आउट हुई हैं और 37वां ऐसा अवसर जबकि वो सिंगल डिजिट में आउट हुई हैं। तो जेमिमा के लिए निश्चित रूप से ये मैच याद रखने वाला निश्चित रूप से नहीं है, हालाँकि हाल फिलहाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए और ओडीआई विश्व कप की बात करें तो वहां भी उनका प्रदर्शन काफी शानदार था, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चला। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई शमीम इस समय स्थान पर हैं सादिया इकबाल के, और देखना यह है कि क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ और सफलता हासिल कर पाती हैं। रमीन शमीम तैयार, इस बार ये गेंद घुटनों के बल बैठते हुए स्वीप कर दिया, फील्डर गेंद के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: साहिरा जवीन ने हालांकि दौड़ तो काफी लगाई थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे काफी ज्यादा तेज थी, फ्लाइटेड गेंद थी थोड़ी सी, और उस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए स्वीप कर दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। जानते थे कि वहाँ फील्डर मौजूद हैं, लेकिन उनके बगल से गेंद को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी इस अवसर पर स्मृति मांधना ने। 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्मृति इस चौके की मदद से।
2: Now the interesting thing, Ashish, is that Pakistan have quickly gone to Shamim, who's an off spinner. She's by no means a frontline bowler. She does bowl her off breaks, but she's considered more of a part-time option. Meanwhile, Saira Jabeen, who dived awkwardly in order to try and stop that ball, landed in a very clumsy manner, and she seems to have hurt herself. The team physio for Pakistan is currently on the field, and she's attending Saira Jabeen. Looks like she's good to continue. Shamim, meanwhile, prepares herself to deliver what will be the third ball of the fifth over. India 24 for 2, Smriti Mandhana facing.
0: अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार हैं शमीम, और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर दंदनाते हुए 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब 28 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद, और इन 28 रनों में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है एच वेस्टर्न पर पाकिस्तान के खिलाफ ICC महिला T20 विश्व कप के अपने इस पहले मुकाबले में। एक बार फिर से तैयार वहां पर रमीन शमीम, बाएं हाथ से ऑफ स्पिनर गेंदबाज, और इस बार क्रीज के बिल्कुल कोने से ही गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर, और गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में इससे पहले कि फील्ड किया जा सके आसानी के साथ, तो दोनों बल्लेबाजों ने